0: सुन काली, आज राति हामी भाग्न पर्छ है।
1: आमाले देखिन् भने मारिहाल्छिन् नि फेरि।
0: रातिको 2 बजी तिम्रो आमाले कहाँ देख्छिन् त भने।
1: आइनाउ

0: हजुर को आवाज हजुर के साथ यो हो हजुर को रेडियो 102.1 MHz।
1: नानी एंड बाबू
2: नमस्ते, आज हम तपाईलाई लाली संग भेटाउँछौ। को हो लाली? लाली हामी प्यारी